तिमीले मेरो माया तोड्यौ, मेरो विश्वास तोड्यौ, मेरो सपना तोड्यौ। हेर्नु छैन मलाई तिम्रो पापी अनुहार।

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोस्टालिक बास सम्झोट आम्मी न लक्ती रहट बरा पानी बस्दा बेर अस्ति कहाँ रहे त सोचो त लट्टी झिपकम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब टिकम छ सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिले सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरहल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण का सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान मिलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाप सही।

ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, नैना जी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया।

0: जीतपुर वाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागा था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।

0: अबे कौन मर गया?
1: अबे हम सब
2: क्यों?
1: मैच टूर्नामेंट के फाइनल सम्मेलन का डेट प्रीपोन हो गया।
2: कब?
1: जो कल।
2: कौन करेगा?
0: ऐसा? प्लीज ना।

How dare you? खबर दार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हाथ से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।